प्यास लगी, पानी दी पाल कीती, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उस खूह दे कोल बैठे।

एक कंड हेड़ा हुंदा है, ओदी आवाज सुन के हिरन जेड़ा है उस आवाज दे पिछे भजदा है। वो आवाज नाल प्यार करदा है। ऐ परमेश्वर जिस तरह मारवाड़ दे लोक पानी नाल प्रीत करदे ने, ओठ वेला नाल प्यार करदा है, कुरंक हिरन जेड़ा है कंडेड़े दी आवाज नाल प्यार करदा है, इसे

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

मान सरोवर हंसला हंस जेड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल

तरनी के औरत नो कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी है, ऐसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

मालिक को जैसे खीर बाल है जिवें बच्चा खीर के दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है चातरक मुख जैसे जल तरा।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए। ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

ए प्रीत दा शब्द पढ़िया नामदेव जी ने अखां बंद ने भोखू पानी दे नाल नको नक भर गया। संत ज्ञानेश्वर ने क्या नामदेव अखां खोल देख परमेश्वर ने तेरी बेनती सुनी सारा खूह पानी नाल भर गया। नामदेव जी ने अखां खोलियां देखिया कि खूह पानी नाल भरे है। लोग जड़े ने हथां नाल ही पानी कढ़ कढ़ के पी रहे ने ता संत ज्ञानेश्वर कहन लगे नामदेव सचमुच तू परमेश्वर नू अपने वस विच कर ले है। जिस तरह तू कहना है ओ परमेश्वर करदा है। और नामदेव जी सगा चुम उठे ते कहन लगे परमेश्वर सचमुच तेरा नाम बड़ा सोहना है तू आप भी बड़ा सोहना।

बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया कबीर तेरा गुरु कौन है, कबीर साहब कहन लगे गुरु मैं ता किसी नु गुरु तारिया नहीं, ता उसके जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी। कबीर तू गुरु जरूर तारन कर। कबीर साहब कहन लगे फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे, उसनु मैं गुरु धारण करां। तां दसन वाले ने कहा कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं, ओ गुरु धारण दे लायक ने, तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है, स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने, तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना। पर एक तरीका है, स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। जे तेनू गुरु दी लोड़ है अमृत वेले उठ, जेड़िया पौड़िया गंगा दिया स्वामी जी उतर दे ने ओना पौड़िया ते जाके लम्मा पै जा, जे तेनू गुरु दी लोड़ है। ए सुन के कबीर साहब कहन लगे ठीक है, क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नूं नींदर नहीं आ रही, क्योंकि गुरु दी लोड़ है। ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्लां ने, या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नूं खुश कर लीए। जे ता गुरु नूं खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं, घर बार तियां पुत्रां माया विच रहिंदिया होया परमेश्वर नूं याद करना, माया विच रहिंदिया होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना, मोह माया तो उत्ते उठ के रहना, ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है,

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अद्धी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तू स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मूंह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वाला।

दे जाए के लम्मा पया कबीर तिथाई जेड़े रस्ते तो स्वामी जी ने लंघना से उस रस्ते ते कबीर सब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखिया पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे नहीं।

तीसरे भगत भगत तन्ना जिन्हां बारे भाई गुरुदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करते हैं।

कोई मखौल है? ठाकर तेनू दे दे, तेनू की पता कि मैं पूजा करी दी, जा जाके गौआ चार। तन्ना कहन लगा देख पंडता, सीधी तरह ठाकुर दे दे, नहीं था मैं दूसरी तरह लवांगा। ब्राह्मण कहन लगा जाट है इन्हें पिछा नहीं छड़ना। कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना, एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के तन्ने नूं दिता अपना पिछा छड़ाने वास्ते। पत्थर एक लपेट कर दे तन्ने नूं गैल छुड़ावे, गैल अपना पिछा छुड़ाया ते लै ठाकुर।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर जगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गया।

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हाँ भी मुंह ना जुठाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडता दे हथों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल नरा

ये बेनती की थी ता लिखी है कि पहला उस परमेश्वर ने तन्ने दी प्रीख्या ले फिर आप पत्थर दे विच प्रगट होके सामने बैठ गए कहन लगे तन्ने आ तू याद करदा सी ले मैं आ गया तीन दिन हो गए ने तू कुछ नहीं खादा ले तन्ने आ पहला तू रोटी खा मैं बाद विच खा लांगा तन्ना कहन लगा नहीं ये तुहाडे वास्ते है पहला तुसी छको फिर मैं छकांगा कहन लगे नहीं तन्ने आ तेनू तीन दिन हो गए ने भुखा बैठे आ तू कुछ नहीं खादा ते तन्ना हाथ जोड़ के कहंदा जे इन्ना ही मेरा ख्याल सी ते पहला क्यों नहीं आ गए तीन दिन मैंने भुखा बैठाई रखी है तेरे ते बड़े सेवक ने बड़ी दुनिया तेनू भोग लवाण वाली है जे इन्ना ही दुख है ते पहला आ जाना सी ए सुन के भगवान कहन लगे नहीं तन्ने तेनू की पता जे तू तीन दिन कुछ नहीं खादा ते मम्मी तीन दिन कुछ नहीं खादा भगत भुखा रवे परमेश्वर किवें खा सकदा तन्ने मैं भी तीन दिन कुछ नहीं खादा मैं तेरा प्यार देख रहा सा भाई गुरदास जी आप

के जेड़ा पोला भाव है वो परमेश्वर दे नाल मेल करांदा है। ए सुन के ए भाई इस कथा तू ए सिख्या लो कि चतराइयां दे नाल परमेश्वर नहीं मिलता, परमेश्वर जेड़ा है वो प्यार

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असीं खा ली हुण दस तैनू चाहीदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तैनू की चाहीदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला

के जिमीदार से पहली चंगी चाहिदी है, अनाज चंगा चाहिदा है, ताके इन चीजा वालों मैं निश्चिंत होके

बोला बैरी गौ भी चाहिदी ते मझ भी चाहिदी पर हुण लवेरियां लवेरियां कहंदे ने दुध देण वाली मझ भी चाहिदी गां भी चाहिदी पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

कोड़ी नुके ऐ भगवान पैरी सोहनी जुती पाई होवे सोहना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मझ भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोहनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

0: संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
1: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
0: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर

0: अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना पग मिले, बहुत दुख उठा ले हन, जमन मरन दे बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम दी आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़के जन्म ना होवे। बोलो सतनाम, जमन मरन तो मुक्त कर दियो। ये सारे पुआड़े जमन मरन करके ही सब नो वड्डा दुख जमन ते मरन दा ही है। विच बचाले हो दुख तकलीफा कितनियां पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनियां तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरन कट दे। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमन मरन कट देवेगा, वो तो खुद जमन मरन दे गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वो कहिंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहिंदा महाराज ने झूठिया चीजा दे विच मेरा तो जन्म ये मौलिक जन्म निकल जाएगा। मैनू महाराज परमावो ना, मैनू ये झूठिया चीजा दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण ये गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देवेगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है? हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है? नहीं। महाराज कहंदे हन, जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम।

ओ परमात्मा ओ हरि मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लवे। जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा।

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बाल के त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, ये कहो जिहा सुपना है? ये ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी, जो मैं ए पारी तप कीते उस तप दा फल मेरी अरदास दा फल जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया। उठ के खड़े हुए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते ने धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्तां लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे गीत गाए जा रहे हैं, कमरे दे अंदर एक सुगंधी है,

इस गल का ज्ञान हो गया कि ए मन है जिसनु सारी उम्र पुत्र समझ के मैं झिड़कदा रहा, ये ते आप नारायण मेरे घर प्रगट होए। पिता मेहता कालू उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ ले,

मैं तेरे मुंह ते चपेड़ भी कट मारी पर तू उफ ना कीती। ऐ दाता मैनू बख्श लै। ए कहंदे होए पिता महता कालू। धन गुरु नानक साहब दे।

दुनिया नमस्कारा कर दी है। वो धन गुरु नानक साहब अपने पिता नु मथा टेकते ने ते सानू उपदेश देते ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है, माता पिता औलाद

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे आ एक मां बाप अठ धियां पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद ओही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धियां पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने वह फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धियां पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंगे जिथे उन्होंने चंगा खाना देंगे चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते हो चंगी तो चंगी विद्या

कई जगह असी गलत हो जाने हैं, क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते, बुराइयां करते हैं, तो फिर बच्चियां तो असी चंगे काम की किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए, ताकि स्वर्ग लभण की लोड़ ना पवे।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखा नु दूर करने वाला नाम है पर किस तरह, आठ पहर आराधी अठे पैर, उदी आराधना करिए उदे नाल मन जोड़िए ते दुखा दा नाश होवेगा। डॉक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दिती है, ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड़ देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है हुण दवाई दी की लोड़। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाह। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वाल चले। दिल्ली जांदे हुए कई जगह ठहर दे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगतां आईयां एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिथे गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नो देखिया।

पंडित लाल चंद ने गुरु साहिबान कहा महाराज एदे कोल गीता पढ़वाओ। सतगुरु जी हस पे ते हस के कहन लगे लाल चंद बड़ा चतुर निकले बड़ा सियाना निकले वादा ते करके गया सी उन्हू लियावांगा जिन्हें गीता कदी पढ़ी नहीं पर उन्हू लेके आया है जेड़ा बोल ही नहीं सकता सुन नहीं सकता। इन्नी गल कह के फिर सतगुरु देख दे छजू चीवर वाल हन ते कहंदे लाल चंद नू ने चंगा लाल चंद जिन्नू भी लैके आ गया ये गुरु नानक का घर ऐसा है इत जेड़ा जैसी भावना लैके आंदा है उसनू ओहो जिहा फल मिलता है। तेरी इच्छा है इहदे कोल गीता सुननी ते गुरु नानक तेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु साहिबां दे हाथ विच हमेशा एक छड़ी हुंदी सी खूंडी ओ खूंडी गुरु साहिबां ने छज्जू चीवर दे सिर ते रखी मेर परी निगाह दे नाल छज्जू चीवर वल तकिया ते मुस्कुरा के कहंदे ने छजू वो पाई सिखा पंडित जी दी इच्छा है के तू गीता सुनावे। पाई सिखा इन्हां दी इच्छा पूरी कर पर सुन कली गीता पढ़नी नहीं नाल श्लोकां दे अर्थ भी करके दसने हन। आखो सतनाम श्री वाहे। जद गुरु की मेहर की नजर होई सिर ते गुरु साहबा ने अपनी छड़ी रखी ते ओ छज्जू चीवर जिदे मुंह विचों लारां वगदियां सन वाल खिलरे शरीर की सुध नहीं रंग ही बदल गया गुरु की शो मिली चेहरा ही होर हो गया जिदे मुंह विचों लारां वगदियां सन बैठा दरबार विच इधर उधर झाकदा सी जिवें बावरे शदाई बैठे हुंदे ने हुण रंग ही होर हो गया। हाथ जोड़ के परे दरबार विच खड़ा होया और फिर चरना ते मत्था टेकया और फिर मत्था टेक के फिर खड़ा होया हाथ जोड़े ते कहन लगा दाता तेरा शुक्र है तू मैनू नवा जीवन दिता है शरीर दी सुध दिती दुनिया दी सुध दिती दुनिया दी सोझी दिती ते पातशाह हुण हुकम कर। साहब जी कहन लगे छज्जू गीता पढ़ के सुना नाले अर्थ करके सुना ते छज्जू चीवर कहंदा दाता हुण ते तेरी मेहर हो गई है हुण ते तू हुकम कर ए गीता ते की सारी कायनात पढ़ के सुना दें। आखो सतनाम श्री वाहे। सारी दुनिया दा हाल दस दें इतनी तेरी मेहर हो गई ते छज्जू चीवर पंडित दे सामने बैठा गीता पढ़ता है नाल श्लोक दे अर्थ कर करके दसदा है ओ ज्यों ज्यों गीता पढ़ता है ते पंडित लाल चंद कोल बैठा रोई जांदा ज्यों ज्यों सुनदा है अखां विच अथरू डिगदे हन ते जद गीता दी ए सारी कथा दा भोग पया ते लाल चंद हुण उठिया भज के चरण पकड़े और चरना ते सिर रख के ज्यों रोन लगा कहन लगा महाराज मैनू खिमा कर
मैं भूल गया तेरा परतावा लैन आया असी औगण आ रहे तेरा परतावा लैने ते सतगुरु कहंदे ने लाल चंद रो ना उठ ओ लाल चंद तेरे सदका एदे भी भाग जाग पे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। और अज भी हरियाणे दे विच ए पंजोखरा साहब गुरुद्वारा इस घटना की याद अज भी दवांदा है और जेड़े लोग उते श्रद्धा भावना नाल जांदे हन उन्हां दी मनोकामना अज भी पूरियां होंदियां हन। और फिर गुरु साहब दिल्ली गए, समा समाप्ति दा हो गया है, इतिहास काफी लंबा है पर समा इतना नहीं। दिल्ली जद महामारी फैली हजारां लोग मरण लगे तां उस वक्त गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने अपने चरण धो के चरण पौल दिती और उहदे नाल इह जिहड़ी बीमारी सी दूर होई। और अज भी देखो कदी दिल्ली जाओ जिन्हां हाली दर्शन नहीं कीते गुरुद्वारा बंगला साहब अज भी उत्थे अमृत दे सोमे उसे तरह पे चलदे हन और अज भी जिहड़े श्रद्धा नाल जांदे हन उहनां दे दुख दूर होंदे ने ते जिहड़ियां भी संगतां जाके मत्था टेकदियां ने अपने आप उहनां दे मुंह तों निकलदा है श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। आओ शब्द की आखिरी पंक्ति पढ़ के इत्थे करिए समाप्ति। और हुण समा तो तकरीबन हो ही चुका है 7:10 तो 8 तक दशमेश दरबार हाजरी भरनी है और कल 7 to 8 इसे स्थान ते फिर आपां सारे गुरु जस करांगे। आओ आखिरी पंक्ति सारे रल के पढ़िए।

साध जना की अचरज अच्छा कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से नहीं बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाय सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसाय थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रम मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ख्याने। साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची।

भंजन। हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु, कृपा निधान जगद गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। नानक शरण पर्यो दुख भंजन।

करुणालय है अर्थालय है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणी

एक सपना है। हजूर बाणी विच भी बख्शिश करदे हन, सुपने छेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा, कदी सुपने भी सच्चे होए हन? सोच ए संसार भी सुपना है। जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ये सुपना है। सुपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना। श्वास श्वास हर नाम जप, बिरथा श्वास मत खो। क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु, इस तो अगला श्वास आना है कि नहीं आना, इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई, सास ग्रास बंदगी कर, श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा, सारा परिवार आके बेनती करन लगा, बाबा जांदियां जांदियां कोई चंगी सुमति दे जा। ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा, मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन, हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन, ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तो मैं तुहानू सुमति दे सकदा हां। पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां, आख्या बाबा ये श्वास तो किसी भी कीमत तो मुल नहीं मिलते। फिर ये बुजुर्ग कहन लगा, फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना, तुहाडा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी धनता दे योग हो जाएगा। ऐसा ना होवे ए लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे, ए लभण वाले नहीं हन।